0: रक्तदान जीवन दान, रक्तदान गरौं अमूल्य जीवन बचाउन सहयोग गरौं। ठाकुर बाबा नगरपालिका सैनवार बर्दियाको संरक्षकत्व, नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज ठाकुर बाबा नगर समिति बर्दियाको सहयोग तथा समन्वय, लारी रक्त संचार केन्द्र गुलरियाको प्राविधिक सहयोग तथा जय लर्ड बुद्ध पब्लिक स्कूल ठाकुरद्वाराको आयोजनामा सम्पन्न हुने 20 वृहत रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी भई अमूल्य जीवन बचाउनका लागि रक्तदान गरौं। रक्तदान कार्यक्रम आयोजना हुने मिति यही भदौ 21 गते आइतबार, समय बिहान 10 बजेदेखि, स्थान जय लर्ड बुद्ध पब्लिक स्कूलको प्रांगण ठाकुर बाबा नगरपालिका 9 ठाकुरद्वारा बर्दिया। आउनुहोस्, 20 वृहत रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी बनौ र मानवताको महान कार्यमा हातेमालो गरौं। रक्तदान जीवन दान।
1: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
2: हा त पोर्सालिक बात सम्झोट आम्हिन्डो लक्टी र हटबरा पानी वर्ष बेर अस्तिम कहाँ र सेक्जाय त सोचो त लट्टी ठिक्कम घर डान डान पानी वर्ष टिकी मन छटपटाइ लाग
1: हा त धन्न ब्यालम डिक ढिकुम से सुरक्षित ठाउँमा सर रली नारे बत्ती
2: हा हो बदा
3: बर्खक ब्यालमा बहिने ढ्यार जोखिम रहत उहमार बहिया से बचकला पहिले हाँ सावधानी अपनाए लद्या फोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण कर सूची बनाई एक चुट्य प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यार हुलकोर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
4: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
5: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ बर्दियाको आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन।

0: जिंदगी में हर चीज पैसा थोड़ी होता है,
1: इश्क़ भी कोई चीज है, खुदा है दवा है, ओ जा जा नहीं तुझे मेरी ये बदुआ है कि चाहोगे।